0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एकतरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सिर्फ आप प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अथवा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

राज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: 106.2, the beat of Bollywood. UAE, the biggest laptop buyback is back at Sharif DG. This school season, get up to 500 dirhams off on your working or non-working laptop. Ready to supercharge your study sessions? Visit Sharif DG today and elevate your PC experience. T's and C's apply.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती, सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। बिग टाइम चेक।
1: गुड मॉर्निंग, 7:05।
2: बॉलीवुड

0: Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: School's starting soon and we need a car.
7: Books, uniforms, everything.
6: Don't worry, I found the best back to school offer on self-drive. Self-drive cars from just 1099 dirhams per month flat rate.
8: And what if we need it for a short while?
6: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with self-drive from 1099 dirhams per month flat rate. Self-drive, get ready, get driving.
9: Get school ready with Baby Shop. Discover backpacks, lunch boxes, water bottles, uniforms and more, featuring kids' favorites like Spider-Man, Disney Stitch, Barbie, Hello Kitty, Minecraft and K-pop. And here's the exciting part. Buy any school bag and unlock big rewards from Dunkin', Krispy Kreme, Dubai Dolphinarium, Orange Hub, Orange Wheels and Aster. Visit your nearest Baby Shop store or shop online at babyshopstores.com.
10: The Big Breakfast brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2.
11: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 दिरहम्स इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।

0: 5,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: गुड मॉर्निंग, इट्स फ्राइडे द 28th एंड इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द लॉन्ग वीकेंड. मुझे बड़ा मजा आता है छुट्टी के दिन आपसे बात करने में, बिकॉज इट इज एट हमदर्द प्रो मैक्स, राइट? मतलब कैमराडरी टू द नेक्स्ट लेवल. आप भी काम पे जा रहे हैं, मैं भी काम पे हूँ, तो बॉन्डिंग हमारी एक अलग ही लेवल पे होती है. मतलब इफ यू नॉट ऑन योर वे टू वर्क, देन देयर इज हार्डली एनी रीजन छुट्टी के दिन टू लिसन टू मी सो अर्ली इन द मॉर्निंग. अनलेस यू ऑन योर वे टू डू समथिंग स्पेशल, कहीं एयरपोर्ट वेयरपोर्ट तो नहीं जा रहे, कहीं छुट्टी वुट्टी पे जाने का मूड तो नहीं है ओवर दिस लॉन्ग वीकेंड? अगर हाँ, देन डेफिनेटली शेयर दैट विद मी. व्हाट इज योर प्लान फॉर दिस लॉन्ग वीकेंड? लेट मी नो. 0543091062, दैट्स माई व्हाट्सएप नंबर. 0543091062. हैप्पी लॉन्ग वीकेंड. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग.

0: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae। The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
1: Homes R Us big deals are here. Save up to 90% off on furniture and home accessories. Best deals, biggest discounts. Hurry, only while stocks last. Exclusively at Homes R Us, Zabeel Furniture Mall, Ood Mehta.
2: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
3: InsuranceMarket.ae 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsuranceMarket.ae
0: Dabur Pudinhara, just one tiny pearl packed with Ayurvedic mint oils, gives your stomach instant soothing relief.
4: The Big Breakfast brought to you by Jator UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.

0: सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: As expected, it's been a bright but very warm start to this Friday morning. Humidity at 55%. It's 36 degrees Celsius right now. Winds blowing at 11 kilometers per hour. Highs of 39, lows of 34 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Yes, the show is brought to you by Dabur Pudin Hara. देखो, अगर आपको इस बात की बदअज़मी हो रही है कि यार सारी दुनिया भर की छुट्टी है, मेरी छुट्टी क्यों नहीं है, तो इस बात की बदअज़मी का हम कुछ नहीं कर सकते हैं. लेकिन जो नॉर्मल एक्चुअल वाली बदअज़मी होती है, इफ इनडाइजेशन इज ट्रबलिंग यू, गेट इफेक्टिव रिलीफ नेचुरली विद डाबर पुदीन हरा. जस्ट वन टाइनी पर्ल पैक्ड विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स गिव्स योर स्टमक इंस्टेंट सूदिंग रिलीफ. फीलिंग अनईजी, पॉप अ पुदीन हरा पर्ल एंड फील रिलैक्स्ड एंड फ्रेश इन नो टाइम. डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन फॉर क्विक नेचुरल रिलीफ.

0: Yeah.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Good morning, it's a Friday and the first day of the long weekend. आप सबको लंबी छुट्टी की बहुत-बहुत मुबारकबाद from all of us at Big 106.2. मतलब जितना नजदीक हमारे दिल के करीब छुट्टी होती है ना यहाँ पे UAE में और कुछ भी नहीं है यार. And वो छुट्टी जो आपने अर्न की हो, विन की हो, देयर इज नथिंग बिगर देन दैट. आप जानते हैं व्हाट वी टॉकिंग अबाउट. इट इज ऑफ कोर्स द लेटेस्ट सीजन ऑफ बिग चेक इन, वेयर वी हेडिंग आउट टू जर्मनी.
3: पार्टिसिपेट इन द बिग चेक इन कॉन्टेस्ट एंड गेट अ चांस टू विन अ ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर डैन्यूब प्रॉपर्टीज, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, एसोसिएट स्पॉन्सर्स फोर्ड एंड शराफ डीजी, ट्रैवल पार्टनर एएफसी हॉलीडेज, एक्सक्लूसिवली ऑन बिग 106.2.
2: Right, we are playing Guten Tag Dilwale all through this week. आज इस कॉन्टेस्ट का आखिरी दिन. And if you want to get your entries in, अगर आपको इस गेस्ट लिस्ट का हिस्सा बनना है, if you want to head out to Germany with Team Big in the Big Check-in, then what you got to do is just type out Big Check-in space देकर अपना नाम. Just type out Big Check-in space your name and send that as a WhatsApp to 054-309-1062. That's the number, 054-309-1062. This is an unmissable opportunity to head out for the ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम. ऑल एक्सपेंसिस पेड ट्रिप होगा ये, बहुत मजा आएगा एंड द फ्रेंड्स दैट यू विल मेक विल बी फॉर लाइफ, दैट इज माई गारंटी. सो बिग चेक इन स्पेस योर नेम टू 054-309-1062. वील प्ले गुटन टाग दिलवाले. दिस इज द बिग ब्रेकफस्ट विद मी सिड.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 8:05।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Authentic, original, and better than our

0: Your holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: गुड मॉर्निंग द 28th ऑफ ऑगस्ट एंड आज ऑफकोर्स आप सबको हम सबकी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. ही इज विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी राखी का त्यौहार एंड आई एम श्योर लॉट्स ऑफ सिस्टर्स हेडिंग आउट टू देयर ब्रदर्स होम्स राइट नाउ. बट थिंग्स हैव गॉटन वेरी वेरी हाई एंड यार एक टाइम था जब लिफाफे से बात बन जाती थी बट आई बिलीव नॉट एनी मोर बिकॉज जस्ट डिड यू नो द बेस्ट राखी गिफ्ट्स का सर्च मैंने किया ऑनलाइन एंड गेस व्हाट शोड अप हाई एंड डिजाइनर ज्वेलरी लग्जरी टेक आइटम्स लोग दे रहे हैं एंड बिस्पोक डायमंड राखीज दिस इज क्वाइट अमेजिंग यार. राखीज आर ऑल्सो रेंजिंग फ्रॉम $1,500 to $7,000 एज वेल. भाई क्या दुनिया है यार ये एंड इज दिस व्हाट द new normal is I don't know. Please WhatsApp me if you're actually looking for something high end to gift to your sister. The number is 0543091062. But aap jante what is the most high end vacation that you can take? All expenses paid trip, big check into Germany. We're all going to be heading out. Aap ja sakte hain with team big 106.2 and kya karna hai aapko iske liye type karna hai big check in space your name and send that as a WhatsApp to 0543091062.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: 106.2 The Beat of Bollywood.

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Morning, it's a long weekend and aap sabko bahut bahut mubarak ho this entire festive season. And भाई आज छुट्टी का पहला दिन है तो I'm hoping and I'm thinking कि कल शाम से ही मस्ती शुरू हो गई होगी. सो कल शाम तक यानी कि सैटरडे शाम तक तो यू वुड बी फीलिंग अ बिट ड्रेन्ड आउट राइट. सो इफ यू वांट काइंड ऑफ चिल आउट रिलैक्स इट्स अ वेरी क्रिएटिव इवनिंग दैट इज कमिंग टू दुबई फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम. इफ यू नीड एन इवनिंग टू स्लो डाउन अनवाइंड दिस इज द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू. 29th of August यानी कि कल शाम को जिक्र ब्रिंग्स इंडिया सेलिब्रेटेड स्टोरी टेलर अमनदीप ख्याल टू दुबई द वेरी फर्स्ट टाइम अब द शो कॉल्ड धक धक. यू कैन एक्सपेक्ट पोएट्री, soul stirring stories and warm chai or at Gems Al Barsha National School. That's Gems Al Barsha National School. Doors open 4:30 p.m. and show shuru hota hai sham 5:30 baje. Tickets start at 199 dirhams only, exclusively available on district including high tea and free parking. And to win tickets keep listening to Big 106.2.
0: Big 106.2 fast track song of the hour brought to you by selfdrive.ae.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:05।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हॉलीवुड। ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो?
1: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जा देरा रसल खोर अलकूस गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
2: Autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor Daniel Properties, this isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The big check-in to Germany, only on Big 106.2.
3: School's starting soon and we need a car.
4: Books, uniforms, everything.
3: Don't worry, I found the best back-to-school offer on Self-Drive. Self-Drive cars from just 1,099 dirhams per month, flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
3: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with Self-Drive from 1,099 dirhams per month, flat rate. Self-Drive, get ready, get driving.
5: Homes R Us big deals are here. Save up to 90% off on furniture and home accessories. Best deals, biggest discounts. Hurry, only while stocks last. Exclusively at Homes R Us, Zabil Furniture Mall, Ood Mehta.
6: The Big Breakfast brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2.
7: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM. Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
6: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
10: Good morning, it's 38 degrees Celsius on this Friday. Humidity right now at 40%, winds blowing at 13 kilometers per hour, highs of 39, lows of 34 degrees Celsius.
6: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.in.

0: तरह दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
1: The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding. The Big Mix miss kiya gaya.
2: तुम कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
3: बिग चेकिन के लिए रेडी हो जर्मनी जाने के लिए?
2: यस यस।
3: ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपको ये वाला सॉन्ग जो है, अगर आप जर्मनी में जो जाओगे कैसल्स में, एकदम प्रिंस क्वीन ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको कैसा फील होगा? लेट मी जस्ट नो कि ये गाना जो है कौन सी फिल्म का है।
4: कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के है।
3: एकदम यही फील आएगी ना जर्मनी जाके, है ना, उन कैसल्स में। ओके, यस बात, व्हाट फिल्म इज दिस?
2: मुगले आजम समथिंग, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय मूवी, जोधा अकबर।
3: जोधा अकबर, आई वाज लाइक कि ये मुगले आजम पर कैसे पहुंच गए।
2: एक्चुअली आई फॉरगेट द नेम ऑफ मूवी, दैट्स व्हाई,
3: बट दैट्स अमेजिंग।
2: That's
3: the correct answer. और आपका नाम shortlist होता है for the big check-in. अगर इसके बाद आपका नाम shortlist होगा, आप हमारे साथ चलेंगे, आपको call मिल जाएगा। लेकिन for this base, this stage, आप जीत चुके हैं, आपका नाम जो है shortlist हो चुका है।
1: Cheer your midday mood, Monday to Friday, 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: It being the first day of the long weekend, no major concerns traffic wise. Let's start with the capital, Abu Dhabi. Halka pulka traffic, E20 per sector 13, Khalifa City, heading west. And iske alawa, nothing else to be worried about. Then there is also Dubai Sharjah ka southbound traffic, 311-11. Par aapko 4 se 5 minute ki der to milegi hi milegi. In case aapko kuch dikhta hai, if it's safe to call, call me on 800-1062.
1: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

ओके, आई एम गोना डू अ टॉप फोर बॉलीवुड ऑन स्क्रीन बहन भाई जोड़ीज, ऑफ स्क्रीन नहीं, नॉट द हुमा कुरैशी साकिब सलीम, रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ ऑन स्क्रीन टॉप फोर बॉलीवुड भाई बहन जोड़ियों के बारे में बात करूंगा. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिकमेंडेशन फॉर यू टू गो एंड वॉच दोज फिल्म्स. कहाँ मिलेंगी ये आपको खुद ही सॉर्ट आउट करना है, लेकिन माय टॉप फोर कमिंग अप एक बार फिर. डोंट फॉरगेट टू कैच मी ऑन द बिग बिंज सैटरडे इवनिंग 7 to 9 एंड देन संडे 10 AM to 12 PM राइट हियर ऑन बिग 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
5: School's starting soon and we need a car.
6: And books, uniforms, everything.
5: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on Self-Drive. Self-Drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
7: And what if we need it for a short while?
5: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Self-Drive. Get ready. Get driving.
2: The Big Breakfast brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2.
8: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. 6 bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
2: The Big Breakfast brought to you by Jator UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
9: गुड मॉर्निंग, इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द लॉन्ग वीकेंड। ज्यादा कोई टेंशन ट्रैफिक आपको दे नहीं रहा है। हल्का बुल्का ट्रैफिक आपको मिलेगा मुसफ़ा इंडस्ट्रियल E30 इन अबुधाबी हेडिंग टुवर्ड्स रब्दान। एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी क्वाइट स्मूथ फ्लोइंग। दुबई शारजा में भी कुछ 4-5 मिनट की देर। 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा। इन केस यू स्पॉट समथिंग, इफ इट्स सेफ टू कॉल, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर।
10: Get ready for school with Self-Drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns.
2: Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 10:06।
1: Bollywood.

0: 101.2 The Beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: Digestion cool tips with Dabur Pudin Hara.
2: Room ka AC cool kare bahar, Dabur Pudin Hara cool kare andar. Your andar ka AC with Ayurvedic mint oils for soothing relief after heavy meals.
1: Dabur Pudin Hara, stay indigestion free the natural way. Available on Noon Minutes. Consult your doctor or pharmacist before consumption.
3: Kuch kahaniyan sirf suni nahi jati, mehsoos ki jati hain. इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में. जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई. एहसास चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल. डोर्स ओपन एट 4:30 PM. शो बिगिन्स एट 5:30 PM. Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
2: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
6: Good morning, it's 38 degrees Celsius right now, humidity at around 50%, expect highs of 39 and lows of 34 degrees Celsius right now.
2: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me.
0: Big 106.2. Big 106.2.
2: Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: big. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: Experience an unforgettable evening as Gagan Mudgal brings you Jadoo, the life of Javed Akhtar. Step into the world of Indian cinema's greatest master of words for one special night in Dubai. August 28th, 8:15 p.m. at The Junction. Don't wait. Get your tickets now on District. Powered by Big 106.2. Listen to her every day.
3: Mugambo! खुश हुआ।
4: जर्मनी की बात हो रही है तो थोड़ा सा जर्मनी का माहौल बनाते हैं। सो बरखा, यू आर लुकिंग आउट ओवर अ रोमांटिक सीनिक फॉरेस्ट व्यू पॉइंट इन बर्लिन, ओके? एंड वहां से एक बहुत ही खूबसूरत जर्मन लड़का, गौर फरमाओ, खूबसूरत जर्मन लड़का
5: नहीं, देसी लड़का चाहिए।
4: देसी लड़का चाहिए जर्मनी जाके भी?
5: देसी में मजा है ना।
4: अच्छा, आई एम नॉट गोना हैंग आउट विद हर इन जर्मनी एनीवेज, डोंट ब्रेक माय फ्लो। सो एक बहुत खूबसूरत फॉर बरखा देसी लड़का कुछ ऐसा कहता है।
6: कितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास हो तो के सरगम।
4: ओए होए होए, मैं तो ऑनेस्टली पहुंच गई हूँ फॉरेस्ट में, कोई लड़का मेरे लिए ऐसा गाए ठंड में। कौन सी मूवी का गाना है ये?
5: फना।
4: फना इट इज। कंग्रेचुलेशंस बरखा, यू शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस चेक इन टू जर्मनी, वन स्टेप अवे फ्रॉम फ्लाइंग विद टीम बिग।
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Morning, let's start with the capital Abu Dhabi. Aapko halka bulka traffic milega E20 par sector 13 Khalifa City heading towards Rabdan, and Rabdan pahunch kar bhi thoda bahut 3-4 minute ka congestion aap expect kar sakte hain. Then chalte hain Dubai Sharjah ki aur, heading south going towards Dubai from Sharjah. 311 E11 dono hi arteries par aapko 3-4 minute max extra bitane honge. Then there is a bit of congestion 66 Dubai Alain Road par, and this is around Al Jadaf area. In case aapko kuch dikhta hai, give me a call 800-1062 par.
0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: Hollywood. You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED-247.
1: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
2: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: Morning, कोई टेंशन नहीं है भाई, हल्का बुल्का ट्रैफिक आपको मिलने वाला है वही यूजुअल जगहों पर। सबसे पहले 66 अल जदाफ के आसपास दुबई अलेन रोड पर हेडिंग टूवर्ड्स E11, देन देयर इज अ बिट ऑफ कंजेशन, दो तीन मिनट की देर रसल खोर वाइल्ड लाइफ से लेकर बिजनेस बे के बीच में। इन केस यू स्पॉट समथिंग, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर।
2: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: All right, इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए. Have a wonderful, wonderful long weekend. Do everything that you were kind of waiting for. वो सारा कुछ जो आपने किया था. I hope all your plans just go absolutely in ship shape, right? So on that note, it's time for me to say goodbye to you. मिलूँगा आपसे कल और परसों. आप जानते हैं, we do the Big Binge. That's the name of my weekend show in which I tell you कि क्या आपको binge करना चाहिए क्या नहीं. इट्स रक्षाबंधन स्पेशल दिस टाइम. सो सैटरडे इवनिंग 7 to 9 एंड देन संडे 10 AM to 12 PM राइट हियर ऑन बिग 106.2. डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टू द बिग बिंज. एंड देन मंडे सुबह तो आपसे मिलूंगा ही. मंडे सुबह द बिग डे राइट, दैट एवरीबडी सो नर्वस अबाउट. बैक टू स्कूल एंड इट्स बी बैक टू द बिग ब्रेकफास्ट. सो 7 to 11 ऑन मंडे मिलेंगे. इन द मीन वाइल डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स. वी आर 106.2 बिग एफएम, 106.2 बिग एफएम ऑन इंस्टाग्राम. दैट्स अ हैंडल एंड यू कैन फॉलो मी. आई एम सिड सेठ, SIDSETH. सो मिलते हैं. Enjoy the rest of your long weekend. Enjoy to the fullest. And I'll see you very, very soon. Bye-bye.

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पांच?
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. High speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 0543091062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf TG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2. The Big Mix. Miss kiya gaya?
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
2: बिग चेक इन के लिए रेडी हो जर्मनी जाने के लिए?
1: यस यस।
2: ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपको ये वाला सॉन्ग जो है, अगर आप जर्मनी में जो जाओगे कैसल्स में, एकदम प्रिंस क्वीन ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको कैसा फील होगा? लेट मी जस्ट नो कि ये गाना जो है कौन सी फिल्म का है।
3: कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के है।
2: एकदम यही फील आएगी ना जर्मनी जाके, है ना, उन कैसल्स में। ओके, यस बात। व्हाट फिल्म इज दिस?
1: मुगले आजम समथिंग, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या मूवी, जोधा अकबर।
2: जोधा अकबर, आई वाज लाइक ये मुगले आजम पर कैसे पहुंच गए?
1: एक्चुअली आई फॉरगेट द नेम ऑफ मूवी, दैट्स व्हाई।
2: बट दैट्स अमेजिंग।
1: That's
2: the correct answer. और आपका नाम shortlist होता है for the big check-in. अगर इसके बाद आपका नाम shortlist होगा, आप हमारे साथ चलेंगे, आपको call मिल जाएगा. लेकिन for this base, this stage, आप जीत चुके हैं, आपका नाम जो है shortlist हो चुका है.
0: Cheer your midday mood, Monday to Friday, 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: Vivek Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 दिरहम्स इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
3: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2.
3: Song of the hour, brought to you by insurancemarket.ae.
4: ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy, tan de repente, y das sentido a toda mi vida con tu querer.
5: Name Samcha, name Jana, yo vi tu nemo seca, señorita.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:07
1: Bollywood.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: आज का पीक 41 डिग्रीज जाता जो कि जा चुका है। सो बेसिकली जितनी भी गर्मी आपको लग रही है इससे ऊपर नहीं होने वाली है।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2 बिग।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurersmarket.ie.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स. 31st अगस्त मंडे को स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं एंड ऑल आई थिंक अबाउट यूएई पेरेंट्स इज वो फिलहाल यही फील कर रहे होंगे.
3: इतनी खुशी मुझे आज तक.
2: संडे को हो जाएगी बिकॉज ऑफ कोर्स 31st मंडे है. अगर कैसी खुशी लग रही है आपको, कॉल करो मुझे 800-1062 पर. यूएई पेरेंट्स का हाल क्या है? टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

0: गांव के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, Jet or UAE, part of Elite Group Holding, and Dabur Pudin Hara.
2: Digestion Cool Tips with Dabur Pudin Hara.
3: गर्मी हो या हैवी मील्स के बाद डिस्कम्फर्ट, डाबर पुदीन हरा है आपका अंदर का एसी. आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स फॉर अ रिलैक्स्ड कंफर्टेबल टमी.
2: डाबर पुदीन हरा, स्टे इंडिजेशन फ्री द नेचुरल वे. अवेलेबल ऑन नून मिनट्स. कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन.
4: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है. इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में. जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई. एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल. डोर्स ओपन एट 4:30 PM. शो बिगिन्स एट 5:30 PM. Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
1: Listen to her every day.
5: Mugembo! Khush hua!
6: Germany ki baat ho rahi hai, toh thoda sa Germany ka mahol banate hain.
7: Okay.
6: So, Barkha, you're looking out over a romantic, scenic forest viewpoint in Berlin, okay? And वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत जर्मन लड़का, गौर फरमाओ, खूबसूरत जर्मन लड़का.
7: नहीं, देसी लड़का चाहिए.
6: देसी लड़का चाहिए जर्मनी जाके भी?
7: देसी में मजा है ना.
6: अच्छा, आई एम नॉट गोना हैंग आउट विद हर इन जर्मनी एनीवेज, डोंट ब्रेक माई फ्लो. सो एक बहुत खूबसूरत फॉर बरखा देसी लड़का कुछ ऐसा कहता है.
8: जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास हो तो के सरगम.
6: होए होए होए, मैं तो ऑनेस्टली पहुंच गई हूँ. फॉरेस्ट में कोई लड़का मेरे लिए ऐसा गाए ठंड में. कौन सी मूवी का गाना है ये?
7: फना.
6: फना इट इज. कंग्रेचुलेशंस बरखा. You're shortlisted for this check into Germany, one step away from flying with Team Big.
1: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
9: It's lighter than other normal Friday. अगर तब भी आपको कहीं और ट्रैफिक मिल रहा है, कॉल करके बताओ मुझे. 800-1062 पर 3-day long weekend. UAE roads भी weekend मना रही है.
1: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
10: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड. स्लो

0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैंने पूछा था एक सवाल कि 31 अगस्त से बच्चों के स्कूल रीओपन हो रहे हैं लेकिन पेरेंट्स का कहना क्या है, खुशी कहाँ है, कौन हमारे साथ है? हेलो
2: हेलो
1: हाय, कौन बोल रहा है?
2: हाय अवनी, दिस इज तरुण.
1: हाय तरुण, कैसे हो? आर यू अ पेरेंट?
2: आई एम नॉट अ पेरेंट बट माय ब्रदर हैज किड्स, सो मेरे नेफ्यू एंड नीस हैं. दे आर गोइंग टू स्कूल फ्रॉम मंडे, उनके मंडे से स्कूल ओपन अप हो रहे हैं. तो दे हैव बीन एट द होम फ्रॉम सो लॉन्ग, तो मैं सोच रहा हूँ मैं संडे से ही उनको ऑफिस भेजना शुरू कर दूँ.
1: आपने बोला कि मैं इनको ऑफिस भेजना शुरू कर दूँ, आप स्कूल जा रहे हैं.
2: मैं खुद ऑफिस जाना शुरू कर दूंगा. मैं खुद ऑफिस जाना शुरू कर सकता हूँ मंडे से उनको स्कूल भेज के.
1: ऐसा नहीं होता लेकिन घर पे खुशहाली रहती है, रौनक लगी रहती है, बच्चे हैं, दे आर सो क्यूट. आपके तो नेफ्यू नीज हैं तो आप उनके साथ खेलते नहीं हो?
2: यस, अब यूज टू हो गया हूँ, अब हमारी खेलने की मन नहीं रही ना, अब बड़े हो गए, अब वो भी बड़े हो गए.
1: थैंक यू. आप उनको पहले दिन स्कूल के क्या भेजोगे?
2: वो सिर्फ चॉकलेट्स खाते हैं, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स.
1: ठीक है, ओके, थैंक यू तरुण, लगे हाथ मुझे भी भेज देना.
2: बाय बाय. Yes, yes, absolutely.
1: क्या हाल है यूएई पेरेंट्स का? लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर कॉल करके.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं। नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने बचपन में ये गाना एक सांस में गाने का ट्राई ना किया हो।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैं बात कर रही हूँ इस गाने की।
2: कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है।
0: सुनने में लगता था कि यार हाँ स्लो बोल रहे हैं, बोला जाएगा है ना।
2: अब सारी हवाएं है, कोई हुई सी अब सारी दिशाएं है, बदली हुई सी अब सारी।
0: इसके आगे अगर आपको आता है मैसेज करो मुझे 0543091062 पर। बाय द वे ये आइकॉनिक लिरिक्स जो है लिखे गए हैं बाय जावेद अख्तर एंड अगर आपको ऐसे आइकॉनिक लिरिक्स पसंद है, आज शो है 8:15 पर, गगन मुदगल इज कमिंग एट द जंक्शन दुबई। ऑल यू हैव टू डू टू अटेंड दैट इज द डिस्ट्रिक्ट पर जाओ, टिकट्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। 8:15 पर शो शुरू होगा। अभी तक अगर टिकट्स नहीं ली हैं, चेक दैट आउट, खरीद लो बिकॉज ये सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बहुत कम बार मिलता है। जादू द लाइफ ऑफ जावेद अख्तर। टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: इट्स पास टू लेकिन टाइम हो चुका है जर्मनी जाने का। कैसे जाओगे बताती हूँ। चिल्ड्रन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
1: Bollywood.

0: you are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ और ये मौका है आपका जर्मनी जाने का। अब इमेजिन करो यार कि आप जर्मनी में हो और ऑल यू कैन हियर इज कि ये कैफे में बैठ के ना आपको ये वाली साउंड आ रही है। सच काम पीसफुल रिवर साइड व्यू और सिर्फ खास आपके लिए आपके फेवरेट प्रेट्ज़ल्स बेक हो रहे हैं, फेवरेट ब्रेड्स बेक हो रही है। ओ माय गॉड, पहुंच गए ना जर्मनी। ऑल नाउ यू हैव टू डू इज टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062। मैं करूंगी आपको कॉल, खेलेंगे एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्टेस्ट एंड लेट्स सी आज की डेट में किसका नाम शॉर्टलिस्ट होता है। टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: Autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor Danube Properties. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany, only on Big 106.2.
1: बर्फ पड़ने वाली
2: है, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
4: इट्स 39 डिग्रीज आउट देयर, लेकिन आप बाहर क्या करो, छुट्टी है यार, घर पे एंजॉय करो.
3: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट alras.me. बिग 106.2.
5: Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 054-309-1062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
6: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
5: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
1: Participate in the Big Check-In contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG.
2: Travel partner, AFC Holidays.
1: Exclusively on Big 106.2.
0: The Big Mix with Avni. On Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड हमने कॉल किया है विशाल को. हाय विशाल.
4: हाय अवनी,
3: कैसे हैं आप?
4: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
3: मैं भी बहुत बढ़िया. एंड हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर जर्मनी?
4: बहुत ज्यादा.
3: बहुत ज्यादा कितना ज्यादा? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100.
4: बहुत ज्यादा, बिकॉज मैं अभी यूएई और इंडिया के अलावा और कहीं गया ही नहीं हूँ.
3: ओके, दैट्स नाइस. तो शुरू करते हैं कॉन्टेस्ट. आपको बताना है कि अगर आप अपनी जर्मनी की सड़कों पे घूम रहे हैं, रोड ट्रिप कर रहे हैं, और आपसे कोई पूछता है कि प्यार क्या है, आपको क्या जवाब देना है? विच डायलॉग, ये जो डायलॉग है वो कौन सी फिल्म का है?
4: ये प्यार दोस्ती है, कुछ कुछ
5: होता
4: है.
5: अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती है, तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता.
3: अरे भाई, डायलॉग कंप्लीट भी नहीं होने दिया विशाल ने. कम ऑन विशाल. विच फिल्म इट इज अगेन?
4: कुछ कुछ होता है.
3: कुछ
4: बहुत
3: कुछ
4: बार
3: होता
4: देखी है.
3: है. लेकिन जर्मनी जाके कितना कुछ होगा?
4: बहुत कुछ होगा मैम.
3: क्या क्या होगा, क्या प्लान्स हैं आपके?
4: बस फर्स्ट टाइम होएगा तो देखेंगे क्या क्या.

0: Which film it is again?
1: कुछ कुछ होता है,
0: कुछ कुछ
1: बार
0: होता है, लेकिन जर्मनी जाके कितना कुछ होगा?
1: बहुत कुछ होगा मैम.
0: क्या क्या होगा, क्या प्लान्स हैं आपके?
1: बस फर्स्ट टाइम होएगा तो देखेंगे क्या क्या विजिट कर सकते हैं वहाँ पे.
0: अच्छा, वन थिंग जो आप हर ट्रिप पर, हर ट्रैवल पर करते ही करते हो?
1: फोटोज. फोटोज क्लिक करना.
0: खुद की के जो साथ में जाएगा उनकी?
1: खुद की भी, साथ लेके भी, और जो आपके साथ भी, और जो ग्रुप होगा सबके साथ में.
0: ओके, सो विशाल, आपका नाम जो है शॉर्टलिस्ट होता है फॉर बिग चेक इन जर्मनी.
1: थैंक यू.
0: अच्छा, सबको बता दो कि हाउ सिंपल वाज इट, क्या किया आपने कि मैंने आपको कॉल किया?
1: बहुत सिंपल था, मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया था, देन आपकी कॉल आई और आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसको मैंने आंसर दिया.
0: सी हाउ सिंपल दैट वाज. अगर आपको भी रजिस्टर करवाना है अपना नाम, ऑल यू गॉट टू डू इज टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062.
2: पार्टिसिपेट इन द बिग चेक इन कॉन्टेस्ट एंड गेट अ चांस टू विन अ ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद Avni, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: बाबू राव गणपत राव आपते बोल।
1: बिग 106.2, द बीट।

0: मुझको।
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। बिग टाइम चेक
2: 1:07।
3: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ आपके साथ अवनी एंड इट्स पास्ट 3 लेकिन पीक लंच आवर टाइम हो चुका है. आपको लगता है फिर अ बेटर एंड अ बिगर फूडी देन मी मैं आपके साथ खेलूंगी. खाओ पियो ऐश करो. लेट्स सी इस गेम में आप किस डिश को जिताते हो. चूज कर भी पाते हो या नहीं कर पाते हो. ऑल यू हैव टू डू इज कॉल करो मुझे इस टोल फ्री नंबर पर 800-1062 एंड लेट्स प्ले विद यू. खाओ पियो ऐश करो.

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Listen to her every day.
2: Mugembo! खुश हुआ।
3: जर्मनी की बात हो रही है तो थोड़ा सा जर्मनी का माहौल बनाते हैं। So Barkha, you're looking out over a romantic, scenic forest viewpoint in Berlin, okay? And वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत जर्मन लड़का। गौर फरमाओ, खूबसूरत जर्मन लड़का।
4: नहीं, देसी लड़का चाहिए।
3: देसी लड़का चाहिए जर्मनी जाके भी?
4: देसी में मजा है ना।
3: अच्छा, आई एम नॉट गोना हैंग आउट विद हर इन जर्मनी एनीवेज, डोंट ब्रेक माय फ्लो। सो एक बहुत खूबसूरत फॉर बरखा देसी लड़का कुछ ऐसा कहता है।
5: जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास हो तो के सरगम।
3: ओए होए होए, मैं तो ऑनेस्टली पहुंच गई हूँ फॉरेस्ट में, कोई लड़का मेरे लिए ऐसा गाए ठंड में। कौन सी मूवी का गाना है ये?
4: फना।
3: फना इट इज। कंग्रेचुलेशंस बरखा, यू शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस चेक इन टू जर्मनी, वन स्टेप अवे फ्रॉम फ्लाइंग विद टीम बिग।
6: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, The Big Thrill with Mansi, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
7: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
6: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
6: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: इट्स 38 डिग्रीज आउट देयर बट जेन्युइनली फील्स लाइक 50। पानी पीते रहो।
6: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 se main hu Avni aapke saath and hum khel rahe hain khao piyo aish karo. Hi Urvi.
2: Hi.
1: Kaise hain aap?
2: All good.
1: Kya aapne
2: khaane ki baat ki to all good.
1: Aapne lunch kar liya?
2: Yeah.
1: Okay, lunch mein kya khaya aapne?
2: Pani puri.
1: Pani puri in lunch?
2: पानी पूरी का कोई टाइमिंग नहीं होता
1: यार, ये तो ये ऐसी चिल लाइफ तो मुझे भी चाहिए कि मैं लंच में पानी पूरी खा रही हूँ।
2: अपनी चॉइस है, जो मंगवाना हो तो पानी पूरी मंगवानी
1: चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पानी पूरी देन। पानी पूरी और भल्ला पापड़ी चाट।
2: पानी पूरी ऑलवेज।
1: ओके, पानी पूरी या फिर वड़ा सांभर।
2: पानी पूरी।
1: पानी पूरी या डोसा।
2: पानी पूरी स्टिल।
1: ओके, पानी पूरी या फिर राजमा चावल।
2: नथिंग कैन बीट पानी पूरी।
1: ओके, पानी पूरी या मैं ये मुश्किल देने वाली हूँ आपको, ठीक है, छोले भटूरे।
2: लेट्स सी। पानी पूरी स्टिल, कम ऑन।
1: पानी पूरी या पानी पूरी का पानी।
2: पानी पूरी वो टूटना चाहिए मुंह में।
1: आई डोंट थिंक सो उर्वी, मैं आपको नहीं हरा सकती पानी पूरी में।

मैं आपको नहीं हरा सकती पानी पूरी में। पानी पूरी के लिए एक सीटी हो जाए यार। Okay, thank you so much. तो आज के लिए पानी पूरी इज द विनर। इफ यू थिंक यू आर अ बिगर एंड अ बेटर फूडी देन उर्वी, या फिर आप पानी पूरी को बीट कर सकते हो, ऑल यू गॉट टू डू इज कॉल करो मुझे 800-1062 पर। टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अपनी आपके साथ एंड प्राइम वीडियो पर एक नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है डोंट बी शाई। क्यों बात कर रही हूँ मैं इसकी फिल्म के बारे में, बिकॉज जेंजीज का इरा चल रहा है एंड जितना मैंने इसका टीजर देखा है ना, फुल जेंजी वाइब दे रहा है। जस्ट नॉट दैट, दिस इज आलिया भट्ट की प्रोडक्शन, वो लेकर आ रही है फिर से। लास्ट मैंने डार्लिंग्स देखी थी, did a great job honestly with that film, और इसीलिए इस फिल्म के लिए भी मैं बहुत excited हूँ। नए एक्टर्स हैं, नए कास्ट इंट्रोड्यूस हुई है, बहुत सारे डेब्यूटेंट्स हैं। 25 सितंबर को रिलीज हो जाएगी प्राइम वीडियो पे। बेस्ट पार्ट इज कि आप OTT पर भी देख सकते हो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी हाउ डिड दिस गो। टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
2: ओ चनती कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक लास्ट आवर ऑफ माय शो दैट्स पास्ट 4।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: आज का पीक 41 डिग्रीज जाता जो कि जा चुका है, सो बेसिकली जितनी भी गर्मी आपको लग रही है इससे ऊपर नहीं होने वाली है।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2 बिग 106.2

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड कल अगर आपका मतलब ऑफकोर्स लॉन्ग वीकेंड प्लान नहीं है, मैं करवा देती हूँ. बिकॉज 29th अगस्त कल होने वाली है बहुत ही सूदिंग इवनिंग. किसके साथ? इंडिया सेलिब्रेटेड स्टार अमनदीप खयाल के साथ. जिक्र ब्रिंग्स अमनदीप खयाल टू दुबई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विद हिज शो जिसका नाम है धक धक. ऑफकोर्स आप शेर व शायरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सुंदर कहानियां, लेकिन उसके साथ वार्म चाय एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल. डोर्स ओपन एट 4:30 PM. शो starts at 5:30 PM. Tickets शुरू होती हैं 199 dirham से, exclusively on district, including high tea and a free parking. So don't let this long weekend go waste yaar. Go join district, mein mil jayengi aapko tickets for the show Dhak Dhak by Amandeep Khayal.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री
1: बनाएंगे। 1 + 1 = 3. Free!
2: That's not right.
1: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids' shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
2: Really? And these 4 designs to choose from?
1: Yes, really! There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
2: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
3: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
4: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
5: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मंडे की हम बात कर रहे थे 31st August स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं. इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर स्कूल विद सेल्फ ड्राइव. Now you can rent a car starting from 1099 dirhams per month, flat rate for the year, zero penalty on early returns. So basically, school ka wapis khulna jana ho gaya hai aur bhi tension free. Aur stress khatam karne ke liye, keep it locked to Big 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy.
0: The Big Jill.
3: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Missed your morning buzz?
4: Yes, we're heading out to Germany in the latest season of The Big Check-In. I've got Roshan with me on the phone line. Roshan, good morning.
5: Good morning, Sid. How are you?
4: Very, very good, yeah. Roshan is in the garments industry, huh?
5: Yes, exactly.
4: कैसा चल रहा है आजकल धंधा कैसा है?
5: धंधा थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, मतलब जैसा मार्केट होना चाहिए वैसा नहीं है, थोड़ा फ्लक्चुएशन है, बट चल रहा है.
4: Two people are holding hands, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं under a clear starry night by Lake Constance. And then what they say is this.
6: क्या तुमने कभी भी एक दिन के लिए भी एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया था?
4: क्या तुमने कभी भी एक पल, बताओ कौन सी फिल्म का ये बहुत ही गंभीर और नॉट गौतम गंभीर डायलॉग है?
5: दिल तो पागल
7: अरे
5: है,
4: आप देख रहे हो मेरा दिल कितना बड़ा है. बताओ भाई कैसा फील कर रहे हो नाउ दैट योर नेम इज इनटू द ड्रॉ?
5: नो, आई रियली नीड दिस वेकेशन बिकॉज ऑफ द हेक्टिक शेड्यूल. थैंक यू सो मच सर.
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: It's lighter than other normal Friday. अगर तब भी आपको कहीं और ट्रैफिक मिल रहा है कॉल करके बताओ मुझे 800-1062 पर. 3-day long weekend UAE roads भी वीकेंड मना रही है.
0: Get ready for school with self drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: 93.2 The Beat of Bollywood. The Big Mix with Avni on Big 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Song of the Hour was brought to you by insurancemarket.ae with 30,000 Google reviews and a 4.8 star rating. Trusted across UAE, built in UAE. फिलहाल हुआ रहा है मेरे जाने का टाइम, पर आपको पता है ना, मैं हमेशा रहती हूँ इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. हैंडल है, मिल जाएगा नाम से, 106.2 बिग FM, या फिर आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो अवनी यार के पेज पर, AVNI YAAR. मिलते हैं संडे को 3 to 6 विद द बिग रिकमेंड्स. टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

0: बचने दे।
1: ये जो वक्त है ना यार, जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
2: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:05।
3: Bollywood.

0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: 1 + 1 = 3
3: That's not right.
2: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
3: Really? And these 4 designs to choose from?
2: Yes, really! There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
3: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
4: High-speed autobahns. Majestic Bavarian castles. The ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back. And it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday. It's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
5: School's starting soon and we need a car.
6: And books, uniforms, everything.
5: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on Self-Drive. Self-Drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
7: And what if we need it for a short while?
5: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Self-Drive. Get ready. Get driving.
8: Get school ready with Baby Shop. Discover backpacks, lunch boxes, water bottles, uniforms and more, featuring kids' favorites like Spider-Man, Disney Stitch, Barbie, Hello Kitty, Minecraft and K-pop. And here's the exciting part. Buy any school bag and unlock big rewards from Dunkin', Krispy Kreme, Dubai Dolphinarium, Orange Hub, Orange Wheels and Aster. Visit your nearest Baby Shop store or shop online at babyshopstores.com.
9: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
12: 38 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 33। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 51% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: तेज सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की झप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Wow, your hair color looks stunning.
3: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
2: Yeah, right.
3: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
2: Really?
3: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
2: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
4: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae.
5: Digestion cool tips with Dabur Pudin Hara.
6: Heavy meals can sometimes leave you feeling uncomfortable. Switch on your tummy ka AC with Dabur Pudin Hara. Just one tiny pearl with Ayurvedic mint oils gives your stomach instant soothing relief naturally.
5: Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way. Available on Noon Minutes. Consult your doctor or pharmacist before consumption.
7: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. 6 bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
4: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
8: It's the long weekend and definitely a long queue. अगर आप शेखजाद पे हैं, फिलहाल 35 मिनट डिले, हैवी ट्रैफिक इस वक्त। अगर आप मरिफ से जा रहे टूवर्ड्स मोहिसना, गेट्स बेटर पोस्ट एतिहाद मॉल, डेरा से इफ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स गुरैर, काफी धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी। हल्का फुल्का ट्रैफिक मरीना से JBR, 12 टू 18 मिनट डिले। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर।
9: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
10: Tum bimar ho?
11: No.
10: To leti kyun?
11: Mere body mein sensations hote hain, pehle unko control karte hain.
10: Kaise?

It is the long weekend while you're out and about, keeping you company with some amazing playlist. Wanna see you wine like Rihanna, get all up on the hum, diggy diggy bum bum. We've got Zach Knight coming up. इसी के साथ अभी हम बात कर रहे थे जर्मनी के ऑटो बैन में कोई स्पीड लिमिट ही नहीं है, बट ध्यान से यहाँ पे स्पीड लिमिट भी है, फाइन भी है. Right here on Big 106.2, keeping you company. मैं हूँ मानसी. Happy long weekend.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: फ्राइडे की शाम वो भी छुट्टी वाली, यह है बिग थ्रिल, मैं हूं मानसी। एंड अगर आज शाम आप कुछ जादू विटनेस करना चाहते हैं, यू वांट एंजॉय गुड ग्रेट एंड फुल ऑफ मैजिक सी शाम, देन यू हैव टू बुक योर टिकट्स राइट नाउ। इफ यू लव ग्रेट सिनेमा, आइकॉनिक लिरिक्स, आज रात 8:15 आप देखेंगे टोटल मैजिक गगन मुद्गल की आवाज में। गगन मुद्गल इज कमिंग टू द जंक्शन दुबई विद जादू द लाइफ ऑफ जावेद अख्तर टुनाइट एट 8:15 PM शो शुरू होगा। आप अभी भी अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं, दे आर अवेलेबल ऑन डिस्ट्रिक्ट। आई प्रॉमिस यू दिस नाइट इज गोइंग टू बी अ नाइट दैट यू विल रिमेंबर। जावेद साहब की कहानी गगन मुद्गल की जुबानी।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:06।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 1 + 1 = free!
1: That's not right.
0: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids' shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
1: Really? And these 4 designs to choose from?
0: Yes, really! There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
1: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
2: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
3: InsurersMarket.ae. We insure the cat. We also insure the yacht the cat is sitting on. Pet, yacht, car, health, home, and more. Call 800-ALFRED 24/7. InsuranceMarket.ae.
4: Don't miss out with Big Ticket.
5: 15 million dirham grand prize.
4: Win up to 1 million dirhams with Big Spin.
5: Plus 5 consolation prizes.
4: Buy now at BigTicket.ae.
6: This is an 18-plus game. Play responsibly. TNCs apply.
2: Missed your morning buzz?
7: Yes, we're heading out to Germany in the latest season of The Big Check-In. I've got Roshan with me on the phone line. Roshan, good morning.
8: Good morning, Sid. How are you?
7: Very, very good, yeah. Roshan is in the garments industry, huh?
8: Yes, exactly.
7: Kaisa chal raha hai aajkal dhanda kaisa hai?
8: Dhanda thoda upar niche chal raha hai, matlab jaisa market hona chahiye वैसा नहीं है, थोड़ा फ्लक्चुएशन है, बट चल रहा है.
7: Two people are holding hands, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, under a clear starry night by Lake Constance. And then what they say is this.
9: क्या तुमने कभी भी एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया था?
7: क्या तुमने कभी भी एक पल, बताओ कौन सी फिल्म का ये बहुत ही गंभीर और नॉट गौतम गंभीर डायलॉग है?
8: दिल तो पागल है.
10: अरे भाई बंदे,
7: आप देख रहे हो मेरा दिल कितना बड़ा है? बताओ भाई कैसा फील कर रहे हो नाउ दैट योर नेम इज इनटू द ड्रॉ?
8: नो, आई रियली नीड दिस वेकेशन बिकॉज़ ऑफ द हेक्टिक शेड्यूल. थैंक यू सो मच सिड.
2: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
13: रास्ता यही है कि इतनी गर्मी में खुद को रखिए काम एंड रखिए काम से काम. फिलहाल इट इज 38 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 33.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
1: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
2: नहीं, ये तो मुफ्त है.
1: गुड, चलो फोन लगाओ.
0: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: कैब।
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
2: बिग टाइम चेक, गुड इवनिंग टाइम राइट नाउ 7:06।
3: Bollywood.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, I'm Mansi. Yeh hai Big Thrill. I'm sure khush to bahut hoge. Ek extra chutti maine kaha na. Pav bhaji pe extra makhan. Idli ke saath extra chutney. प्यार में एक्स्ट्रा एफर्ट एंड हफ्ते में एक एक्स्ट्रा छुट्टी सबको अच्छी लगती है. वैसे मेरी तो शेरो शायरी कुछ खास है नहीं, बट आई लव शेरो शायरी, आई लव पोएट्री एंड आई लव स्टोरीज एंड ऑल्सो लोकी. आई लव अमनदीप ख्याल, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ. जब मुझे पता चला ही इज कमिंग टू दुबई, आई गॉट वेरी वेरी एक्साइटेड. इफ यू फॉलो हिम ऑन सोशल्स यू नो द रीजन, बिकॉज द वे ही डीकोडेड तमाशा. मैंने वो पहली रील देखी थी एंड उसके बाद बस स्क्रॉल करते करते करते करते मैंने सारी रील्स देख ली. इनफैक्ट अमन वॉज विद सम एमएनसी एंड वन फाइन डे जस्ट लाइक वेद फ्रॉम तमाशा ही रियलाइज्ड कि वो इसके लिए नहीं बना है, वो कहानियां सुनने और सुनाने के लिए बना है. सी आई कांट वेट टू सी हिम परफॉर्म टुमारो. एंड अगर आप भी आना चाहते हैं, इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग इवनिंग. कल 29th ऑफ अगस्त को जिक्र लेकर आए हैं इंडिया के सेलिब्रेटेड स्टोरी टेलर अमनदीप ख्याल टू दुबई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विद हिज शो धक धक. एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ स्टोरीज, पोएट्री एंड सम अमेजिंग चाय. दिस इज हैपनिंग एट द जेम्स अल बर्शा नेशनल स्कूल. डोर्स ओपन एट 4:30 PM and the show will start at 5:30 PM. Tickets priced at 199 dirhams, available exclusively on District. Tickets include high tea and free parking. In fact, yahan bhi main aapko mauka de rahi hoon couple invites jeetne ka. Amandeep Khayal definitely is the voice of modern romance. And gaana jo main aapko sunane wali hoon romantic hai. Is gaane ke peeche kiski aawaz hai, aapne simply wahi batana hai.
3: पल में सदिया जी आया, मैं भी आया, मैं भी आया, मैं भी आया, जा भी आया, मैं जी आया.
2: If you figured out the voice behind this romantic gana, then send me a WhatsApp 0543091062 पर.

0: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
4: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
5: Wow, your hair color looks stunning.
6: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
5: Yeah, right.
6: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
5: Really?
6: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
5: I'm buying it right now.
6: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
7: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. 6 bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: It's the long weekend and definitely a long queue. अगर आप शेखजाद पे हैं फिलहाल 35 मिनट डिले, हैवी ट्रैफिक इस वक्त। अगर आप मरिफ से जा रहे टूवर्ड्स मोहिसना, गेट्स बेटर पोस्ट एतिहाद मॉल। डेरा से इफ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स गुरेर, काफी धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी। हल्का फुल्का ट्रैफिक मरीना से JBR, 12 टू 18 मिनट डिले। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर।
0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. Big.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: बिग 106.2

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: School's starting soon and we need a car.
4: And books, uniforms, everything.
3: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on Self-Drive. Self-drive cars renting from just 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Self-drive. Get ready. Get driving.
6: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
7: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 dirhams इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 38 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 33। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 51% पर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धोपटूंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: ना प्यार होने की उम्र है मेरी, बट पिंपल होने की भी नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे इतने पिंपल्स हो रहे हैं। मुझे कभी अपनी पीक जवानी में पिंपल्स नहीं हुए। कौन है जो मेरे सुंदर चेहरे को नजर लगा रहा है? फिलहाल इफ यू हैव एनी घरेलू नुस्खा, आई एम आस्किंग द लेडीज एंड ऑल्सो मेन। आई नो लॉट ऑफ बॉयज हु हैव टेकन केयर ऑफ देयर पिंपल्स, देयर जिट्स। प्लीज डू डीएम मी। फिलहाल डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स 106.2 बिग एफएम एंड ऑफ कोर्स द पिंपल नुस्खा मानसी टॉकिंग, दैट्स माय इंस्टाग्राम। मैं आपसे मिलती हूँ कल वीकेंड पे। आई कीप यू कंपनी विद द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन। इन फैक्ट वी गॉट अ फैब प्लेलिस्ट। इफ यू आर अ फेलो मिलेनियल, यू आर इन फॉर अ ट्रीट। हमारे जमाने के गाने कल सारा दिन आप सुनेंगे बिग 106.2 पर। Have a great weekend. I'll see you here. Bye.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, The Beat of Bollywood.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. सम नाइट्स नीड नो वर्ड्स, जस्ट द राइट वाइब. सिंक इनटू द बिग चिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: Big 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Chill, brought to you by InsuranceMarket.ae.
1: InsuranceMarket.ae.
0: Listen to her every day.
2: Mugambo, खुश हुआ.
3: जर्मनी की बात हो रही है तो थोड़ा सा जर्मनी का माहौल बनाते हैं.
4: Okay.
3: So, Barkha, you're looking out over a romantic, scenic forest viewpoint in Berlin, okay? And वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत जर्मन लड़का. गौर फरमाओ, खूबसूरत जर्मन लड़का.
4: नहीं, देसी लड़का चाहिए.
3: देसी लड़का चाहिए जर्मनी जाके भी.
4: देसी में मजा है ना.
3: अच्छा, आई एम नॉट गोना हैंग आउट विद हर इन जर्मनी एनीवेज, डोंट ब्रेक माय फ्लो. सो एक बहुत खूबसूरत फॉर बरखा देसी लड़का कुछ ऐसा कहता है.
5: जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास हो तो के सरगम.
3: ओए होए होए, मैं तो ऑनेस्टली पहुंच गई हूँ फॉरेस्ट में. कोई लड़का मेरे लिए ऐसा गाए ठंड में. कौन सी मूवी का गाना है ये?
4: फना.
3: इट इज. कंग्रेचुलेशंस बरखा, यू शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस चेक इन टू जर्मनी, वन स्टेप अवे फ्रॉम फ्लाइंग विद टीम बिग.
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM. द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड. Big Chill, where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: 2 या 4? 4। कब तक वापस लौटाएगा?
1: यही 4-5 दिन में।
2: 4 या 5? 5।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Sky and Night Fields. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: आप चुम्मी को घर ड्रॉप करते हो और मैं आपकी गाड़ी से उतरती हूँ और मैं अपने घर जा रही होती हूँ।

0: Some nights need no words, just the right vibe. Sink into the big chill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करो भी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: कैच द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे फ्रॉम 3 to 6 PM विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। No rush, no noise, just soul-soothing music on a moonlit ride. This is the Big Chill on Big 106.2, the beat of Bollywood.